0: समाधि अंदर गावन साध विचारे।
1: गावन जते सती संतोखी गावे वीर करारे।
0: गावन पंडित पढ़ रखी सर जुग जुग बेदा नाले।
1: गावे है मोनिया मन मोहन स्वर्गा मच प्याले।
0: गावन रतन उपाए तेरे अठ सठ तीरथ नाले।
1: गावे जोत महाबल सूरा गावे खानी चारे।
0: गावे खंड मंडल पर पंडा कर कर रखे तारे।
1: से तुदनु गावे जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले।
0: और केते गावन से मैं चितन आवन नाने क्या बिचारे।
1: सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई।
0: हैपी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई।
1: रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जन पाई।
0: कर कर बेखे कीता अपना जिपते सी वडियाई।
1: जो तुस पावे सोई कर सी हुक्म ना करना जाई।
0: सो पात साओ साहा पात साहेब नानक रहन जाई।
1: मुंदा संतोख सरम पद झोली ध्यान की करे बभूत।
0: किंथा काल कुवारी काया जुगत डंडा प्रतीत।
1: आई पंथी सगल जमाती मन जीते जग जीत।
0: आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस।
1: भक्त ज्ञान दया भंडारण घट घट बाजे नाद।
0: आप नाथ नाथी सब जाकी रिद्ध सिद्ध अवरा साध।
1: संयोग बिजोग दो कार चलावे लेखे।

0: माने नो मन माने नो रोग रोग नमस्त शनाने
1: नमो मंत्रंग मंत्रंग नमो जंत्रंग जंत्रंग नमो इष्टे इष्टे नमो तंत्रंग
0: सदा सचिदानंद सर्व प्रणाशी नूपी रूपे समस्त निवासी
1: सदा सिद्धदा बुद्धदा प्रेत कर्ता अदो उर्दर धंग अगंग ओंग हरता
0: परम परमेश्वर पुरुष पालंग सदा सर्वदा सदाता दयालंग
1: अशेदी अपेदी अनामंगा कामंग समस्तो पराजी समस्त स्थामंग तेरा जोर चाचरी
0: थलिया पीता पे है
1: प्रभु है अजू है अदेश है अपेश है पुचंग पर्यात छंद
0: गादे अबादे नंदी स्वरूपे नौ सर्व माने समस्त निदाने
1: नमस्तंग निथापे नमस्तवंग परमाथे नमस्तवंग गंजे नमस्तवंग पंजे
0: नमस्तवंग काले नमस्तवंग पाल नौ सर्व देशे नौ सर्व पेशे
1: नमो राज राजे नमो साज साजे नमो शाह शाहे नमो महा महे
0: नमो विद गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सुख सुखे
1: नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो

0: सर्व रंगे तर्पंगी अनंगे
1: नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे खिजे बीजे समस्तं प्रसिजे
0: कृपालं स्वरूपे को कर्मं पनासी सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धं नवासी चरपट शांत व प्रसाद
1: अमृत कर्मे अमृत धर्मे खल जोगे चल भोगी
0: अचल राजे अटल साजे अखल तर मंगल अख कर्मंग
1: दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने
0: सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुक्ता सर्वं जुक्ता
1: सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले
0: प्रवाल शंत वै प्रसाद
1: नाद रूप नाद मूर्त जोन पुरख पार
0: सर्व मान तिर मान देव पेव आद उदार
1: सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल
0: जितर ततर ब्रह्माजी अवधूत रूप रसाल
1: नान पावन जात जाक रूप रंग न रेख
0: आद पुरख दार मूरत जोन आद सेख
1: देश और न पेह जाक रूप रेख न राग
0: जितर ततर दिशा विस्या होए फैलियो न राग
1: नाम कामीन पेख ताम न जाहे
0: सर्व मान सर्वतर मान सदै मानता
1: एक मूर्त ने दर्शन

0: के कर्मं करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है
1: के सर्वत्र मान है के सर्वत्र दान है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौना है
0: के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राजे है के सर्वत्र साजे
1: के सर्वत्र दीना के सर्वत्र लीना के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र पाहु
0: के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है
1: सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेकी के सर्वत्र पेकी
0: के सर्वत्र काजे के सर्वत्र राजे के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पोख है
1: के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है
0: के सर्वत्र मानिए सदैव प्रधानी है के सर्वत्र जापिए के सर्वत्र थापिए
1: के सर्वत्र पान के सर्वत्र मान के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र
0: के सर्वं कली में के परमं फही में के आकल अला में के साहिब कला में
1: सुन वजुए तमाम रुजु है में सो सलाम है सलिख तुम दाम
0: गनीमल शिखस्ते गरीबल परस्ते बलंदल मकाने जमीनल जमाने
1: कमियल तमाम रुजु निदान हरि फुल जिमर जाय के यकीन
0: है अनेकल तरंग है अपेद है अपंग है अजीजल निवास है गनीमल खराज है
1: रूप स्वरूप अत्र मुक्त भूत है प्रभुक्त प्रभा है सुजुक्त सुधा है
0: सदैवंग स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्त उपराज है सदा सर्व साज है
1: समस्त सलाम सदैव काम निर्वास रूप है अगाध है अनूप है
0: अगाध रूपे अनाद स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे
1: त्रबाध्य गंजी अगाध्य सुभंग सर्भागी सर्वानुरागी
0: त्रिभुक्त स्वरूप है अशिज है अशुत है के नरकन पर नास है पृथ्वी अल पर वास है
1: निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है भोक्त स्वरूप प्रजोक्त अनूप है
0: निरुक्त सदा है विभुक्त प्रभा है

0: कंठठ पारुआठ
1: ठीक धर्म अठ ठीक कर्म अनबन अनंत दाता महंत हर बोल मना संत व प्रसाद
0: प्रणाले हैं हर काले हैं कल खंडन है मह मंडन है
1: जगदेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व बारण है
0: जग के तरण है जाके करण है मन मान्य है जग जान्य है
1: सर्वंग पर है सर्वंकर है सर्वपासे है सर्वनाशे
0: है नाकर है विसंग पर है सर्व ईश्वर है जगतेश्वर है
1: ब्रह्मंडस है खल खंडस परते पर है करना कर है
0: जपा जप है थपा थप है कृता कृत है अमृता अमृत है
1: अमृता अमृत है करना कृत है कृता कृत है धरनी त्रित है
0: अंकेश्वर है परमेश्वर है कृता कृत है अमृता अमृत है
1: अजपा कृत है अमृता अमृत है नर नायक है खल खायक है
0: संग पर है करुणालय है नृप नायक है सर्पायक है
1: पंजन है अर्गंजन है रिप तापन है जप जापन है
0: कृत है सर्वा कृत है कर्ता कर है हरता हर है
1: परमात्म है सर्वात्म है आत्म बसे जस के जस पुचंग पर्यात छंद
0: नमो सूर सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे
1: नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे
0: नमो रास संताम संग शांत रूपे नमो परम तत्व

0: ओंकार सतगुरु प्रसाद पातशाह दसवीं तो प्रसाद सवैये श्रावक सुध सुमो सधान के देख फिरो घर जोग जति के
1: सूरस राधन सुध सदा एक संत समूह अनेक मति
0: सारे देश को देख रहे हो मत को उन देखी तो प्राणपति के
1: श्री भगवान की पाई कृपा हूँ ते एक रति बिन एक रति
0: मातम तंग जर जर संग अनुपो तंग सुरंग सवारे
1: रंग करंग से कूदत पौन के गौण को जात निवारे
0: भगवान के भू भली बदन आव शीश न जात बिचारे
1: पहे तू कहां पे पूपत अंत को नांगे ही पाए पधारे
0: गीत फिरा सब देश दिशान को बाज ढोल मृदंग नगारे
1: गुंजत गुड़ के जुन के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे
0: तब वैख भगवान के पूपत कौन का नहीं जात बिचारे
1: श्रीपद श्री भगवान पजे बिन अंत को अंत के ताम सदारे
0: नाम दया दम दान संजम नेम अनेक बसिख
1: वेद प्राण के तेव करान जमीन जवान सवान के पेख
0: हार जति जा तार सब सब

0: वासन मातिम दंगन मान मलेंगे
1: श्रीपति श्री भगवान कृपा बिनके आग जहान दान चलेंगे
0: बार बड़ी बरियार विचार सार की धार पछैया
1: तोरत देश मलिंद वासन माते के जान के मान मलैया
0: गड़ गड़ान के तोड़न हार सुबातन ही चक चार लवैया
1: साहेब श्री सब को सिर नायक चाचक नेक सो एक दवैया
0: देव नंदन सातर भूत भविख भवान जपेंगे
1: जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे
0: परतापन बार जतन पापन के बहु पंज खपेंगे
1: साध समूह पर सन फिरे जग सतर सवे अब लोक छपेंगे
0: मान विंदर गिंदर निरात बजान तुर लोको राज करेंगे
1: कोटि शनानिक जातक दान अनेक स्वंबर साज बनेंगे
0: सर्वसन सचिव अंत फसे

0: अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा।
1: कार्त सी को हमारी सकल प्रजाजन आप सवारी।
0: शिवकन को शिवकन सुख दियो, सतरन को पल मुँह बद कियो।
1: काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत।
0: जीते कुंचर असूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला।
1: सतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी।
0: एक एक की पीर पछाने, कट कट

0: निरालम ज्ञानत वेद भेद हर आलम
1: का निरभ कार निरलंब आदो नीलो नादो संभ
0: ताका मूड चारत पेदा जाको पेव न पावत वेद
1: ताको कृपाहन अनुमानत महामूड कछ भेद न जानत
0: महादेव को कहत सदा से निरंकार का चीनत ने
1: आप अपनी बुध जीती वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती
0: तुमरा लखा न जाए पसारा कै विद सजा प्रथम संसारा
1: रूप अनूप स्वरूपा रंग भयो राव कई पूपा
0: अंड जेरज से तजकीनी उत्पच खान बौरा चदीनी
1: मूल राजा हो बैठा कहूं सिमट पहु संकरया कैठा
0: सगरी सिस्त दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप सजंभव
1: अब रचा मेरी तुम करो सिखो बार सिख संग रो
0: दुर्जिते उठव दुत पाता सकल मलेश करो रण काता
1: तो तब शरणी परी तन के दुष्ट दुख तो हुआ मरे
0: और जवन पग

0: सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा।
1: साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाईया,
0: सुख मनाए वस्या, जिन इच्छा सब पुजाईया,
1: सदा कुर्बान कीता गुरु बिटो, जिस दिया ए वडियाईया।
0: नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो,
1: वाजे पंच शब्द तित कर सुपागे, कर सुपागे शब्द।

चित्ते अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएंदा आपे दे वड़ियाई आपे कर्म कराएंदा वडो वडा वड मेदनी सरासर धंधे लाएंदा नदरी पठी जे

क्रिया अनेक प्रकार किए वो जतना पुण दान हो में वो रतना। शरीर कटाए हमें कर राती वर्तने में करे वो पाती नहीं तुल राम ना विचार नानक गुरमुख ना जपी एक बार नौखन पृथ्वी फिर चिर जीव है माह उदास तपी सरथी वै अग्न माहि हुमत प्राण कनक सुध है वरपुम दान नूली कर्म करे बहु आसनो जैन मार्ग संयमत साधनो निमख निम कर सिर कटावै तौपी हमें मैल ना जावे हर के नाम समसर कछ नाहे नान गुरमुख नाम जप गत पाहि मन कामना तीर दे छुटै गर्भ गमाना मन ते हुटै सो चक्कर दिन से अरे रात मन की मैल न तन ते जात। इस देही को बहु साधना करै मन ते कभु न बिकट रह जल तो विभव दया नीता सुदका हुए काची पीता मन हर की नाम की महिमा ऊच नानक नाम पुत्रे पतत बहु बूचा बहु स्यानप जमका भव व्यापे अनक जतन का तृष्णा त्रापै भेक अनेक अग्नि बुझै कूट पाप दरगै निसजै सूटस नाही उब्याल मोहि व्यापे माया जाल वकतूत संगली जमडानै गोबिंद भजन बिन तिन्नी मानै हर का नाम जब दुख जाए नानक बोले सहस भाई चार पदार्थ जेको मांगै साजना की सेवा लागै जेको अपना दुख मिटावै हर हर नाम हृदय सदगावै जेको अपनी सोभा लोरे साथ संगे उमे छोरे जेको जन मरण ते डरै साजन की सरणी परै जिस जन को प्रभ दस प्यासा नानक ताके बल बल जासा सगल पुरख मैं पुरख प्रधान साथ संग जांका मिटे बिमान आपस को जो जाने नीचा सो गणिया सब ते ऊंचा जांका मन हुए सकल गिरीना हर हर नाम तिन कट कट जीना हर हर नाम तिन कट कट चीना मन अपने ते बुरा मटाना पेखे सगल सिस साजना सुख दुख जन समिष्टेता नाग पाप पुन लेपा निर धन कहो तन तेरू नाव नथावे कहो नाव तेरा था ओ नमाने को प्रभ तेरु मान सगल कटा को देवदान करन करावन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गतमित जानो आपे अपन संगा प्रवरते तुमरी उस्त तुम ते होए नानक अवर न जान सकोए सर्व धर्म श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया सासंग दुर्मत मल हिरिया सगल उत्तम में उदम भला हर का नाम जपू जी सदा सगल बानी में अमृत बानी हर को जस सुन रसन बखानी सगल थान ते उत्तम थान नानक जेकर वसे अर नाम सलोका निर्गुण यार एन्या सो प्रभ सदा संभाल जिनकी आत इस चीत रख जिनकी आत इस चीत रख नानक निबिहिनाल अष्टपदी रमैया के गुण चेत प्राणी कवन मूलते कम दुष्टानी जंतु सार सवार सिंगारिया गर्भ अग्न में जने उबारिया बार अवस्था तुझे प्यारे दूध पर जो बन भोजन सुख सूदा बिरद प्याऊ पुर साख सेन मुख प्याऊ बैठको देना हे निर्गुण गुण कशुना बूझै बख्श लिहो तो नानक सीजै जे प्रसाद तारूपर सुख बसै सूत प्रात मीत बनता संहसै जे प्रसाद पीवै शीतल जला सुखदाई पवन पावक मुला जे प्रसाद भोगी सब रसा सगल समग्री संसात बसा दीने अस्त पाप करनित रसना तिसे त्याग अवर संगरचना से दुख मूण अद व्यापै नान काड लिओ प्रव्यापै आदि अंत जो राखन हार तिस्यु प्रीत न करे गवार जा की सेवा न दुत पावै ता सो मूड़ा मन ली लावै जो ठाकुर सद सदा हजूर है तक वंदा जान त दूर है जा की चल पावे दरगे मान तिसे बजारे मुक्ति जान सदा सदाए भूलन हार नानक राखन हर पार रतन त्याग कौडी संगरचै साच छोड़ झूठ संग बचै जो छड़ना सो अस्थिर खर मन है सो होवण सो दूर परान है छोड़ जाए तिसका शर्म करै संग सहाय तिस पर हरै चंदन लेप उतारे तोए गर तब प्रीत पसम संग होए अंधकूप मैं पतद बिकराल नानक का डले हो प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात बाहर पे कंतर मल माया सब सनाए कश करेश पाया बाहर ज्ञान त्यान शरान अंतर बापे लू सुवान अंतर अग्न बाहर तन स्वाह गल पाथर कैसे तरे थाह जाके अंतर वसे प्रभ आप नानक ते जन सहज समाता सुनंदा कैसे मार्ग पावे कर गै लेह उड़न वहाव कहा बजार पूजे डोरा निष्कही तो समझे भौरा कहा बस पद गावे गुंग जतन करे तो पी सुरपंग
ਕਹਿ ਪੀ ਗੁਲ ਪਰਬਤ ਪਰ

वह पत जाए अष्टपदी दस पस्तुले पासे पावे एक विस्कान बखूट गिवावे एक भी ना दे दस पी हरले तो मूड़ा कौ का करे जिस ठाकर से हो नाही चारा ताको की जय सद नमस्कारा जाके मन लागा प्रवीठा सर्व सूखता हुवन बूठा जिस जने अपना हुक्म बनाया सर्व थोक नांक तिन पाया अगनुत साह अपनी दे रास खात पीत परते अंदोलास अपनी अमान कष्ट बाहर साहले ज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोवे बाहुर उसका विश्वास न होवे जिसकी वस्तु तिस आगे राखे प्रभु की आज्ञा माने माथे उसते चौगन करे निहाल नानक सह सदा दयाल अनक पात माया के हित सरपरोप तै जाने अनीता बिरख की छाया सुरंग लावे ओ बिन से ओ मन पछतावे जो दिसे सो चालन हार लपटरे उते अंधदार बटाऊ सूजो लावे नेह ताको आत्मा वे केहे मन हर के नाम की पीठ सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई मिथ्या तन तन टंब समाया मिथ्या होमे ममता माया मिथ्या राजन तन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ अस्थि सुबस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेकस्ता मिथ्या त्रु मोह अभिमान मिथ्या पशु प्रकृत गुमान अस्त्र भक्त साधकी शरण नानक जप जप जीवे हर कै चरण मिथ्या सरवन पर निंदा सुन मिथ्यास्त को हिरा मिथ्या नेत्र पेक्त पाती रबाद मिथ्या रसना भोजन अन्न स्वाद मिथ्या चरण पर उपकार कुतावे मिथ्या मन पर लुभ लुभावे मिथ्या दानी पर उपकारा मिथ्या बास रीत पकारा बिन पूजे मिथ्या सब भय सफल दे नानक हर हर नाम ली बिरथी साथ की आर जा साच साच बिना के हुद सूचा बिरथा ना बिना तने अंध मोखा अवत ताकी दुर्गंध बिन सिमरन दिन रहन बिरथा बिहाय मेघ बिना जो खेती जाए गोविंद भजन बिन बिरथ सब काम जो कृपन केन्द्र अर्थ दाम धान धान ते जांदे कट बसे रणाओ नाक ताके बल बल जाओ रहत अवर कश अवर कमावत मन ही प्रीत मुख कंड लावत जानन हार प्रभु परवीन बाहर पीख ना काहू पीन आप रूप देश आप न करे आप जाप जन्म मरे जिसके अंतर बसे निरंकार तिसकी सीख तरन संसार जो तू पाने तिन प्रभ जाता नानक जन चरण प्राता करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया आपे माने आपे आप अप करत नबेरा किसे दूर जनावत किसे बजावत नीरा उपाव स्यान सकल ते रहत सब को जाने आत्म की रहत जिस पावे तिस ले लड़ लाए थान तरन तरिया समाय सो सेवक जस कृपा करी निमख निमख जाप नानक हरि सलोका काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सजाए अहमेब नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जे प्रसाद सती अमृत खाए तिस ठाकुर को रख मन माहे जे प्रसाद सुकंद तन लावे तिसको सिमरत परम गत पाव जे प्रसाद पसे सुख मंदर तिसे त्याय सदा मनंदर जे प्रसाद करे संग सुख बसना आठ पैर सिमरु तिस रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याय त्यावन जोग जे प्रसाद पाठ पन हावे तिसे त्याग तरल भाव जे प्रसाद सुख सह सोई जय मन अर पैता का जा सक बीजै जे प्रसाद तब सबको मान है मुक्ता को जस रसन बकान है जे प्रसाद त्रिवरता धर्म त्रिवरता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जपत दरगा मान पावे नानक पद सिति कर जा जे प्रसाद रो कंचन देही लिवला बुद्ध सराब सुनेही जे प्रसाद तेरा उला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत जे प्रसाद सकल सदर टाके मन सरणी पर ठाकुर प्रभु ताके जे प्रसाद तुझको न पहुंचे मन सास सा सिमर प्रभु उच्चे जे प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ताकी भक्त करे जे प्रसाद अपखन पारी जय मन ते सिमरत को आस की जय जे प्रसाद अस्वस्थ आसवारे मन ते प्रभु को कबना बसारे जे प्रसाद बाग मिल कतना राग प्रोहि प्रभु अपने बना जनतरी मन मनत बनाई उड़त बैर सत सित आई तिसे त्याय जो एक अलखा इहा उहा नानक त्रि रखै जे प्रसाद करे पुन बंदान मन अट पैर का तिसका ध्यान जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभु को सास सास तारी जे प्रसाद रसुंदा रूप सुप्रभ सिमरु सदा अनूप जे प्रसाद रिनी की जात सुप्रभ सिमरु सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पतरा गुर प्रसाद नानक दसकै जे प्रसाद सुने करन नाद जे प्रसाद पेखी विसमाद जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख सह जे बसना जे प्रसाद हस्त कर तलै जे प्रसाद संपूर्ण फल है जे प्रसाद परमगत पावे जे प्रसाद सुख सह समावे ऐसा प्रभु त्याग बरकत लागू गुर प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तू प्रकट संसार तिस प्रभु को मूला मन विसार जे प्रसाद तेरा प्रता

ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता ब्रह्म ज्ञानी कह हुई अचिंता ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंता ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभे आप ब्रह्म ज्ञानी का बड परताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड भागी पाइये ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये ब्रह्म ज्ञानी को कुज महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्म ज्ञानी को सकल मनवाहे।

परम पो जाय स्वय मन की टेक वृत्ति सब जान देवन को के भगवान जिसके दिए रहे गाय बन दिन लागे आए मारे राखे को आ मन के सुनाई हाथ इसका हुकुम सुको है तिसका नाम रखंड पुराय सिमर सिमर सिमर प्रसोय नानक विघ्न लागे को सत मन में कर निंकार कर मन मेरे सद विहार निर्मल सनमृत भी सा सोयला कर ले जीव नैनु पे ठाकुर कारंग सा संग बिन से सब संग चरण चलो मार गोविंद मिठे भाव जपी हर बिंद कर हर कर्म सुन हर कथा हर दर्गे नानक उजल मथा बड़ भागी ते जन जग मा सदा सदार के गुण गाए राम नाम जो करे विचार से तनवंत कने संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एक एक पछाने सुत पियो सो जी जान नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिने निरंजन जाने गुरु प्रसाद अपने आप सूझे तिसकी जानो तिस न बूझे सा संग हर हर जस कायत सर्व लोक त्यार जन रायत अन दिन कीर्तन गड़ बुख्यान किस्त मैं सोई निर्वाण एक उपरसिजन की आसा तिसकी कटिया जम की फासा पार पुंग किसी मन भूख नानक किसी न लाग गए दोख जिस गुवार प्रमंच दे आवे सो सं सो लाने लावे जिस पर अपना कृपा करे सो सेव को किस ते डरे जैसा सात ऐसा दिष्टा अपने कार्य में आप समाया सो द सीजिया गुरु प्रसाद ऐसा बुझिया जब देखो तब सब कुछ मूल नानक सो सुखम सो सोल ना कि जन्मे ना कि मरे अपन चलते आप ही करे आम जाम दृष्टन दृष्टि आगे कारी तारी सब श्रेष्ठ आप ही आप सगल मैं आप अनक जुगत राज थाप थाप अविनाशी नाई किस कांड धारण धार ब्रह्मांड अलख पे पुर प्रताप आप जपायत नानक जाप जिन प्रभु जाता सो सु बावंत सगल सगल संसार उदरे तिन मंत प्रभु के सेवक सब उदाहरण प्रभु के सेवक दुख सारण आपे मेले कृपाल गुरु का शब्द जपे निहाल उनकी सेवा सोई लाग गई सुनो कृपा करे बढ़वा गए नाम जप दपा विश्राम नानक तिन प्रभु को तुम कर मान जो कुछ करे सो प्रभु के रंग सदा सब सहर संग सहसवायु सो हो करणे हार पछाणे सोए प्रभु का किया जड़ मिहल काना जैसा सत ऐसा दिष्टाना जिस तव जित मैं समाए सुखन दान उनू बनाए आप गुआप दिनू मान नानक प्रभु जाने को जान सलोक सर्व कला भरपूर प्रभ बिरथा जानन हार जाका सिमरन द्रिया नानक तिस बल हार स्वजी टूटी गांडन हर गोपाल सरबजियां पे प्रतपाल सगल चिंता जुन माज ते व्यर्था कोई नाय रे मन मेरे सदार जाप अपना सी प्रभ आपे आप अपन किया कुछ न होए जिस प्राणी लोचे को आए तिस बिन नाय तेरे किस काम गत नंग जापे करना भूपंत होए ना ही मोहे प्रभु की जो सगल कर सो है तनवंता है क्या को कर जन सब की तिसका दिया दरबे असुरा जे को कहा वै प्रभु की कला बिना कहता वै जे को होए बांधा तार तिस दिन हर जाने गवार जिस गुरु प्रसाद टूटे रोग नानक सुजन सदा रोग जो मंदिर को थमे थमड़ तो गुरु का शब्द मणे स्थमन जो पाखाना चढ़त रहे प्राणी गुरु चरण लगत निस्तरे जो अंधकार दीपक प्रगास गुरु दर्शन दीप मन होए विकास जो माम ध्यान में मार्ग पावे तू साधु संग मिल जोत पलटावे तिन संतन की बाँचो तूर नानक की आलोचा पूर मन मोर काय बिलाए प्रोड़ के कल लिखिया पाई दोख सो प्रभु देव न हारे और त्याग तू तिसे जितार जो कुछ करे सो सुकुमान भुला कह फिर जान कौन वास्ता इतर संग लेफ्ट रस लो बतांग राम नाम जब हृदय माए नानक पास ती कर जाए जिस वकर को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया तज मान ले मन मोल राम नाम हृदय में तोर लाद के संता संचालय वृत्या विख्या जंजाल धन धन कह सब को है मुख उजर दर कह सोए है ए वपार वपारे नानक ता के सद बल हारे चरण साध के तो तो भी और साध को अपना जिये साध के धूल करो इसनान साधु ब्रजई कुरबान साध सवट भागी बाई साध संगर कीर्तन गाई अनुभिकंते साधु राखे यार कुन गए मृत रचा के उठ गए संता दरिया सर्व सोग नानक ते पाए मृत को जीवालन हार भूखे को देवतदार सवन धन जाकी दृष्टि माए प्रभु के का लैना पाए सब किस तिसका करने जोग तिस बंधु सुर हो न होग जब जन सदा सदा दिन रहनी सब तो निर्मल करने कर कृपा जिस को नाम दिया नानक से निर्मल थी आ जाके मन गुर की प्रति ते जिने आवे हर पवचित भगत भगत सुनिया तै लोए जा के हृदय को सच करनी सचता की रहते सत सत सत मुकैद
ਸਤਿਦਿਰ ਸਾਚਾ ਆਕਾਰ ਸਚ ਵਰਤੇ ਸਾਚਾ ਪਾਸਾਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਮ ਸਤ ਕਰ ਜਾਤਾ ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਸਚ ਸਮਾਤਾ ਸਲੋਕ।

प्रसन्न स्वय अविनाशी ब्रह्मण में राख मानो की तू त्याग तिस्ते प्रण किसको सर्वनिरंतर को सोय आपे बिना आपे दाना गैर गंभीर गही सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद कृपा दान दयाल बख्शान दे सात्र की चरणी पाओ नानक की मन नाव मनसा पूर्ण सरना जोग जो कर पाए सोई हो हरण भरण जगने तरफ होर जिसका मंत्र जाने हो रे अनुरूप मंगल साजा के सर्व थोक नियम करता के राज में राज योग में जो गीता में तुम सर्गिस्त में भोगी त्याय ते भक्त सुख पाए नानक तिस प्रोख अग्नि अंत न पाए जाकी लीला की मितनाय सगल देव हरि उगाय पिता का जन्म के जाने पूछ सगल पुरोही अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिंदे जनदास नाम ते आवैसे ते गुण मै जा को फरमाए जन्म रह फिर आवे जाए ऊच नीच तिसके स्थान जैसा ज नावै तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना बेकरै रंग नाना विदगुरदास प्रभु ना सी एक अंकार नाना जल्द करे किनमाय पूर पूर्ण सब उठाए नाना विदगुर फंड बनाई अपनी कीमत आपे वाए सब कर दिसके सब तिसके ठाओ जब जब जीवे नानक कर नाओ नाम कुधारे सगले जंत नाम कुधारे खंड ब्रह्मांड नाम कुधारे समृत वेद पुराण नाम कुधारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम कुधारे अस्पताल नाम कुधारे सगले कार नाम कुधारे पुरे सफाओ नाम के संग कुधरे सुन सरण कर कृपा से अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सूजन गत पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरुष सत केवल प्रधान करतूत सात सात जाकी बाणी सात पुरुष समाज समाणी सात कर्म जाकी रचना सात मूल सात सात उत्पाद सात करणी निर्मल निर्मल जिसे जात से सा पढ़ी सात नाम प्रभु का सुखदाय विश्वास सात नाम गुरते पाए सात भजन सात उपदेश सात तेज जन जा किरदे प्रवे सात नृत्य पूजे जे कोय नाम जपता की गत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गाते जिसके शीर्ष करने हार और न बूझ करत विचार करते कीमत न जाने किया नानक ज्योतिष भावे सो वर्तिया विषम विषम भय विषमा जिन बुझा दिशा स्वाद प्रभु के रंग राज जन लय गुरु के भजन पदार्थ लय दाते दू काट नार जा के संग तरे संसार जन का सेवक सोड़ भागी जन के संग इकले लागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुरु प्रसाद नानक फल पावे सलोक आद सच जुगाद सच है पे सच नानक होसे पे सच अष्ट भय चरण सा सत प्रसनार पूजा सा सत सेवदार दर्शन सा सत वेखनार नाम सा सत आवनहार आप सत सत सब धारी आपे गुण आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभुगता सुरत सत सत जसंता बुजनहार को सत सब होए नानक सत सत प्रभु सोए सत स्वरूप जिन माने करण क्रम तिन मूल पछाने जा कर दे विश्वास प्रवया ज्ञान तिस्मान प्रगटाया पै ते निर्भय विसाना जिस ते विजय तिस्माय समाना बस माय ले बस कढ़ाई ता को भिन्न न कह न जाए बुझे बुझन हार विवेक नारायण मिले नानके ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक मन प्रतीत ठाकुर के सेवक निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभु का सेवक नाम करंग सेवक को प्रभु पालन हार सेवक ही राख निरंकार सो सेवक जिह जा प्रभु तारे नानक सो सेवक सा सा समारे अपने जन का परदा ढाके अपने सेवक की सार पर राखे अपने सेवक की आपद राखे ता की गद में कोई न लाखे प्रभु के सेवक को गुण पहुंचे प्रभु के सेवक को इच उच जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक देश जाज बुरानी की कीरी मैं को लाखे प्रसुम करे लश्कर को लाखे जिसका शासन कट दिया ता को रख देकर हाथ मानस जतन करत बपा तिसके करत बिरथ जात मार राखे अवन को सर्व जिया कर रखा सोए काय सोच करे रे प्राणी जप नानक प्रबल कुड़ान बारंबार बार पर जपिए पिय अमृत मन अंदर पिय नाम तंजन गुरमुख पाए तिसके शरण दृष्टाए नाम धन नाम रूप रंग नाम सुकर नाम का संग नाम रस जो जंत्र उतने मन धन नाम है नाम समान उठत बैठ सोत नाम कहो नानक जन के सदका बोलो जाजे वादे नाथ प्रभु ने जन की नी रात करे भगत आत्म के चाय प्रभु ने सोरे समाये जो हुआ वो सो जाने प्रभु ने कहो कुशान
तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कायक न जानो आठ पर जुरे कहो नानक जिन पूरे मन मेरे तिन की ओर ले मन तने अपना तिन जन दे जिन जन अपना प्रभु पुछाता सो जन सर्व थोका दाता तिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसके दर्श पाव मिटावे सियाणु सगली साठ तिस जन की दू सेवा लाग आवन जान न होई तेरा नानक तिस जन के पूजो सत पैर सलोक सत पुरख जन जाने सतगुर तिसका नाम तिसका संग सिख उदर नानक हर गुण गाओ असवय सतगुर सिखी करे प्रतपाल से गुर सादयाल सिखी गुर दुरमत मले गुर बचनी हर नाम सरे सतगुर सिखे बंधन काटे गुर का सिख विकार ते हटे सतगुर सिखो नाम दान दे गुर का सिख गुड़ भागी है सतगुर सिख कल पल सवारे नानक सतगुर सिख को जी नाल समारे गुरु के ग्रह से गुजर गुरु की आगमन में सह आप सुखो कर कृष्ण जावे हर हर नाम दे सत आवे मन बेच सतगुर के पाति सेवके कार जरास सेवा कर तो ने कामी तिसको हो प्राप्त स्वामी अपनी कृपा से आप करे नानक सो से गुरु की मत ले बीस विश्व गुरु का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सतगुरु सिद्र नावन कुबार गुरु को बल जा सर्वनिधान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म जन जन में पार में कह अपने किस परम सहस्याण बल न जाई है नानक ऐसा गुरु उड़भागी भाई सफल दर्शन बेगत पुणीत पर सत चरण गत निर्मल रीत है पेटत संग्राम गुण रवि पार ब्रह्म की दरगे गव सुनकर भजन करने अखाने मन संतोख आत्म बदयाने पूरा गुरु अख्यो जा का मंत्र अमृतिश पे क्यों संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस पाव जिहले मिलाए जिह वाहे कुस्तत अनेक सतपुरख पूर्ण विवेक काहू बोल न पोचत प्राणी गमुचर प्राण निर्वाण निरहार निर्वाण सुखदाई ता की कीमत गुण न पाए अनुक भगत बंदन करे चरण कुण हृदय सिमरै सतबलहारी सतगुरु अपने नानक जिस प्रसाद सब रोज अपने आरस पावे जन कोय अमृत बेअमृत सो होए उस पुर का नायक देव ना जाके मन पकड़े गुंदा से आठ पैर हर का नाम ले सच उदय से को दे मुंह माय के संग न लेप मन में रखे हर हरे कंधकार दीप प्रगा से नानक प्रमो दुख तह ते नासे तब तुम्हारे ठंड वरताए अंत वह दुख नाठे फाये जन मरण के मिटे देश साधु के पूर्ण उपदेश पौ चुका निरपोय बस सकल व्याल मन देखा नशे जिसका साधन कृपा तारी सा संग जब नाम रारे तिथ पाए चुप चुके भ्रम गावन सुन नानक हर हर जा सरुण निर्गुण आप सरगुण पियो ही कला धार दिन सगली मोय अपने जरत प्रभा अपनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाई को सरुण निरंतर खो सोए ओत पोत रव्या रूप रंगे भय प्रकाश साधके संग रच रचना अपनी कल तारी अनक बार नानक बलहारी सलोक साथ न चाले बिन भजन बिखिया सगली सार हर हर नाम कमावना नानक तन सार स्वय संत जना मिल गुरु विचार एक सिमर नाम धारो पाव स्वामी विचारो चरण को मिल उधार थारो कारण कारण सोभरा सुमरथ दृढ़ कर कहो नाम हर बात तन संजो भगवान समझन के निर्मल मंथ एक आस राख मन माए सर्व लोग नानक मिट जाए जिस तन को चार कुंड उड़ता है सो तन हर सेवा ते पावे जिस सुकुणित बाछ मीत सो सुख साधु संग प्रीत जिस शोभा को करे भली करणी सा सो जर की शरणी अणगु पावी रोग न जाए रोग मुड़े यार खुदलाए सरुण थान में हर नाम धान जब नानक दर गई प्रवान मन प्रोध वर के नाए दैति सावते आवे टाए ताको विघ्न लागे कोय जाकर दिवस हर सोए कलता ती ठंडा हरनाओं सिमर सिमर सदा सुख पाओ पौगुण से पूर्ण आस भगता आत्म प्रगास जिस घर जाए वसे बनासी को नानक काट जम फांसी तत् विचार कह जन साचा जन्म रे सो काचो काचा आवा कौन मिटी प्रभ से वे आप त्याक्षण गुरुदेव मृतन जन्म को हुए उधार हर हर सिम प्राण धार अणगो पावन छूटन हारे सिमर साध वे विचारे हर की भगत गुरु मन लाए मन वंशित नानक खुल पाए संग न जाल तेरे तन तू क्या लपटावे मूर्ख मना सुत मित कुमर बनता इनते कौन कौन सनाथ राज रंग में विस्तार इनते कौ कौन छुटकारा सस रस सवारी झूठा डम झूठ पा सारी
ਜਿਨ ਦੀ ਤਿਸ ਬੁਝਣਾ ਬਿਗਾਨਾ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਨਾਨਕ ਪਸਤਾਨਾ ਗੁਰ ਕੀ ਮਾਤੂ ਲੈ ਆਣੇ ਭਗਤ ਬਿਨਾਂ ਬੋ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੀਤ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਤੁਮਾਰੋ ਚੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਾਖ ਮਨ ਮਾਏ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਗਲੋਕ ਜਾਏ ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰ ਨਾਮ ਜਪਾਓ ਸੁਨਤ ਕਹਿਤ ਰਹਿਤ ਗਤ ਪਾਓ ਸਾਰ ਪੁੱਤ ਸਰ ਕੋ ਨਾਓ ਸਹਿ ਸੁਭਾ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਓ ਤ੍ਰਿ ਉਤਰ ਸਮੈਲ ਬਿਨ ਜਾਇਆ ਮੈਂ ਫੈਲ ਹੋ ਚੰਦ ਵਿਸੈ ਸੁਖ ਨਾਲ ਸਾਸ ਗ੍ਰਹਿ ਸਰ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਛਾੜ ਸਿਆਲਮ ਸਗਲੀ ਮਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਵੇਂ ਸਚ ਧਨ ਹਾਰ ਪੂੰਜੀ ਸੰਤ ਕਰੋ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਸੁਖ ਦੁਰਗੇ ਜੈਕਾਰ ਸਰਵਨ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਕੇ ਮਸਗਲੇ ਏਕੋ ਜਾਪੇ ਕੋ ਸਾਲਾ ਏਕ ਸਿਮਰ ਏਕੋ ਮਣਿਆ ਏਕ ਸੁਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਅੰਤ ਮੰਤਨ ਜਾਪੇ ਭਗਵੰਤ ਏਕੋ ਏਕੇ

गुण यार नीच जान नानक तुमरी शरण पुरु भगवान सर्व कंठ मुकदमा पाए निम कर के गुण गायन ग्राज पगुड़े आई हर के नाम के कथा मन पाए बहु भोजन का प्रसंगी रसना जब ती हरानी पड़ी सुकरणी हृदय तनवा पड़ी सुकरणी शोभा तनवा दिर्दिवसे पूर्ण गुरु।